नमः। ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राण परायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय नमः।

मानस परिशोधकाय नमः। ओम श्री साई साधकानुग्रह वटवृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साई सकल संशय हरा

0: स्वामी मध्य प्रदेश के सभी भक्तों और बाल विकास के बच्चों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज हम श्री सत्य साई बाल विकास के बच्चे भगवान के समक्ष एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं,
1: जिसका शीर्षक है भागवत कथामृतम।
0: नाटक है सारा संसार, जीव मात्र अभिनेता है, ईश्वर है सूत्रधार।
1: व्यास जी की अद्भुत रचना श्रीमद् भागवत और भगवान श्री सत्य साई बाबा की भागवत वाहिनी, ईश्वर और भक्ति के कितने रहस्यों का उद्घाटन करती है। अपने भक्त के लिए मानव रूप में ईश्वर ने कितना कष्ट सहा है।
0: व्यास जी ने परीक्षित को कई घटनाएं पूछने पर बताई थी।
1: हे भक्तजनों, नाट्य रूप में भागवत कथामृत का रसा स्वादन करने के लिए चलिए वृंदावन और देखिए नारद और भक्ति का अद्भुत मिलन।

0: नारायण। अद्भुत है यह वृंदावन, कलयुग का दूषित प्रभाव यहां दिखाई नहीं देता। सर्वत्र भगवान कृष्ण के स्मरण में लीन भक्त दिखाई देते हैं। धन्य है यहां के नर नारी, धन्य है अनेक तीर्थों की यात्रा करते हुए मैं वृंदावन पहुंचा हूं। सर्वत्र कलयुग के प्रभाव से मनुष्यों को धर्म विरुद्ध आचरण करता देखकर मन बड़ा व्यथित है।
1: हे महात्मन, कुछ मेरी व्यथा भी सुनते जाइए। आपका दर्शन तो अत्यंत शुभ माना जाता है। हे नारद, मैं बहुत कष्ट में हूं।
0: हे देवी, आप कौन हैं? ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन हैं? ये अचेत अवस्था में क्यों पड़े हैं?
1: मैं लोक में प्रसिद्ध भक्ति हूं। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य।
0: हे भक्ति, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? आप तो स्वयं नारायण की प्राण प्रिया हैं। आपके आमंत्रण से स्वयं नारायण कहीं भी उपस्थित हो जाते हैं।
1: हे नारद, कलयुग के प्रभाव से मैं भी जर्जर हो गई थी, किंतु वृंदावन में आकर मैं पुनः युवती हो गई। लेकिन मेरे पुत्रों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। माता युवती और पुत्र वृद्ध, यही स्थिति मेरे पीड़ा का कारण है। हे नारद, मेरे कष्ट का निवारण हो ऐसा कुछ प्रयास कीजिए।
0: हे भक्ति, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो, तुम्हारा दुख अवश्य दूर होगा। जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, गोप गोपियों का पालन किया, वह कृष्ण कहीं नहीं गए हैं। तुम व्यर्थ चिंता मत करो।
1: हे नारद, ये कलयुग ही मेरे दुख का कारण है। इसे जब परीक्षित ने देखा, उसी समय इसका वध क्यों नहीं कर दिया? हे मेरे पुत्र ज्ञान, हे मेरे पुत्र वैराग्य, मुझसे तुम्हारी यह दशा नहीं देखी जाती।
0: हे भक्ति, सतयुग, त्रेता, द्वापर जैसे युगों में ज्ञान वैराग्य का महत्व था। कठोर तपस्या, वह भी दीर्घ समय तक करने के पश्चात जो फल प्राप्त होता था, वह कलयुग में केवल नाम स्मरण से प्राप्त हो जाता है। हे भक्ति, मैं ज्ञान और वैराग्य को चैतन्य करने का प्रयास करता हूं। हे ज्ञान, हे वैराग्य, जाग जाओ, उठो, मैं तुम्हें वेद पाठ सुनाऊंगा। हे ज्ञान और वैराग्य, वेद पाठ सुनो। ओ, कोई प्रभाव नहीं हुआ? अच्छा, उपनिषद सुनाता हूं। हे ज्ञान, हे वैराग्य, गीता पाठ सुनो। ओ, गीता पाठ से भी ये दोनों सचेत नहीं हुए, अब क्या करूं? हे नारायण, हे नारायण।
2: हे नारद, ज्ञान और वैराग्य के उद्धार का उपाय तुम्हें महामुनि बताएंगे। वह उपाय ज्ञान और वैराग्य को सचेत और स्वस्थ कर देगा।
1: हे नारद, ये आकाशवाणी मेरे हृदय में आशा का संचार कर रही है। वे महामुनि कौन हैं जो उपाय बताएंगे?
0: हे देवी, मैं उनका नाम ज्ञात करने और उनसे मिलकर इस समस्या का निदान करने का प्रयास करता हूँ। भगवान कृष्ण की प्रिया भक्ति, विश्वास रखो, मैं तुम्हें इस कलयुग में घर घर में जन जन में स्थापित कर दूंगा।
3: हरि शरणम, हरि शरणम।
0: हे सनकादि महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के कष्ट का निवारण करने का साधन मुझे महामुनि बताएंगे। ऐसी आकाशवाणी वृंदावन में हुई थी।
3: अवश्य श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करें, आप चिंता से मुक्त होकर इसका श्रवण करें।
0: हे महामुनियों, मैंने वेद पाठ, वेदांत, गीता पाठ, ज्ञान और वैराग्य को सुनाया, परंतु वे दोनों सचेत नहीं हो सके, तो श्रीमद् भागवत श्रवण से उनका कष्ट दूर होगा? यह रहस्य मुझे बताने की कृपा करें।
3: हे नारद, आप भक्ति की गंगा प्रवाहित करने के उद्देश्य से यह प्रयास कर रहे हैं, जो अति उत्तम है। आप तो स्वयं महान भक्त हैं। वेद वेदांत शास्त्र आदि का सार फल रूप में श्रीमद् भागवत है। हरिद्वार में गंगा घाट पर कथा के सप्ताह श्रवण का आयोजन करते ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ स्वतः वहां पहुंच जाएगी, क्योंकि जहां श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां भक्ति सा परिवार उपस्थित रहती है। कथा के शब्दों से भक्ति का कष्ट दूर हो जाएगा, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ और युवा हो जाएंगे। कथा हम सुनाएंगे, हमारे साथ चलिए गंगा घाट पर कथा की व्यवस्था करते हैं।
0: धन्य है, धन्य है आप, आपकी कृपा से निश्चित ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सुखी होंगे।

हरिद्वार में ऋषि मुनियों के साथ संकादि मुनियों के श्रीमुख से भागवत कथामृत ग्रहण कर भक्ति का कष्ट दूर हो गया। प्रसन्न होकर भक्ति नृत्य करने लगी, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य पुनः स्वस्थ और

0: भगवान बाबा के द्वारा बताई गई भागवत वाहिनी से प्रस्तुत है अगला दृश्य, बालक परीक्षित जन्म व नामकरण।
1: बालक शुक्ल पक्ष के चंद्र की तरह उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता गया। महल में आने वाले हर व्यक्ति को बालक लगातार देखता है। ऐसा लगता है कि वह हर किसी की परीक्षा ले रहा है अथवा किसी को ढूंढ रहा है।
2: भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता ज्योतिषियों ने बताया है बालक ने समस्त शुभ ग्रहों में जन्म लिया है।
3: ऐसे पवित्र माणिक्य को प्राप्त कर हमारा कुल धन्य हो गया है।
4: हाँ, उन्होंने कहा है कि यह देवी देवताओं का भक्त, दयालु, सर्वप्रिय, यशस्वी होगा और कुल प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा।
2: हाँ माते, पंडितों ने जन्म कुंडली देखकर यह भी बताया है कि यह बालक जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा, यह तो मुक्ति प्राप्त करेगा।
5: अर्जुन, भगवान कृष्ण को नामकरण समारोह में लेने गए हैं। शुभ मुहूर्त आ गया है, सभी अतिथि आ रहे हैं। सभी भ्रातागण, हर अतिथिगण का यथोचित सत्कार हो, आप स्वयं देखिए।
6: भगवान कृष्ण की जय हो, द्वारकाधीश पधार रहे हैं।
5: भ्राता, उसे जाने दीजिए।
7: पुत्र का व्यवहार तो अद्भुत, विचित्र और आश्चर्यचकित करने वाला है।
5: हे कृष्ण, बालक बाल सुलभ क्रीड़ाओं को छोड़कर परीक्षा करता रहता है।
7: कुछ क्रीड़ा सामग्री बालक को दीजिए। यह साधारण बालक नहीं है, यह मेरी भी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, इसका नाम परीक्षित होगा, यह सर्वप्रिय होगा।
5: महर्षि, आप त्रिकालज्ञ हैं, कृपया इस बालक के विचित्र व्यवहार का कारण बताइए।
6: राजन, जब यह बालक गर्भ में था तब अश्वत्थामा ने आपके वंश का नाश करने के लिए बाढ़ छोड़ा था। वह बाढ़ जब बालक को नष्ट करने को बढ़ा तभी सर्वव्यापी श्री कृष्ण उसके निकट पहुँचे और बालक की उन्होंने रक्षा की। तभी से वो बालक जन्म के बाद अपने रक्षक को खोजता था।
5: जी महर्षि, अब मैं समझ गया।
6: आज उस दैविक मंगल मूर्ति के दर्शन उसने किए, उनके पास गया, उनसे मूक प्रार्थना की ताकि वे उसे गोद में बैठा ले।
5: धन्य है हम, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आभारी व कृतज्ञ है।
8: भगवान कृष्ण के अपने धाम चले जाने का समाचार सुनकर माता कुंती ने प्राण त्याग दिए। पांडव द्रौपदी के साथ उत्तर दिशा की ओर चल पड़े।
1: इसके पूर्व पांडवों ने परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। परीक्षित ने अपने पितामहों से कहा कि वह उनके बिना राज्य का भार कैसे वहन करेगा, अतएव उन्हें हस्तिनापुर में कुछ समय तक रहना चाहिए। किंतु पांडव परीक्षित को आशीर्वाद देकर अपनी यात्रा पर निकल गए। मंत्रीगण और गुरुजनों के प्रयास से राजा परीक्षित का विवाह विराट नगर की राजकुमारी ईरावती के साथ संपन्न हुआ। कुछ समय पश्चात महाराज को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम जन्मेजय रखा गया।
8: भगवान कृष्ण एवं पांडवों से संबंधित नाटकों को देखना, गीतों को सुनना महाराज परीक्षित को अत्यंत प्रिय था।
6: आज भगवान कृष्ण की लीला पर आधारित बहुत सुंदर नाटक देखा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो भगवान आज भी हमारे साथ हैं, वे हमें छोड़कर कहीं नहीं गए। ये ब्राह्मण देवता कदाचित मुझसे मिलने आ रहे हैं। प्रणाम करता हूं ब्राह्मण, मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूं।
9: यशस्वी हो महाराज, आपके राज्य संचालन से प्रजा सुखी और प्रसन्न है। जो नाटक आपने देखा उसके दर्शकों में एक मैं भी था। आपके दर्शन की अभिलाषा थी जो पूर्ण हुई। महाराज, कई वर्षों पहले जब आपके पितामह धर्मराज ने भगवान की उपस्थिति में अश्वमेध यज्ञ किया था तो मैं प्रमुख पुजारी था। भगवान कृष्ण ने मेरा कुशल क्षेम पूछा, जैसा अभी आपने पूछा। भगवान ने अपना दुशाला धरती पर बिछा दिया और मुझे उस पर बैठने के लिए कहा।
6: हे ब्राह्मण, आप कितने सौभाग्यशाली हैं। आपको भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनसे वार्तालाप का मौका मिला।
9: महाराज, मुझसे उस दिन एक भूल हो गई थी जिसका स्मरण मुझे दुखी करता रहता है।
6: वह कैसी भूल थी ब्राह्मण, मुझे अवश्य बताइए।
9: भगवान कृष्ण ने स्वर्ण वेदी पर बैठकर एक स्वर्ण थाल पर हम सब ऋषियों को चरण रखने के लिए कहा। हमारे चरण को धोकर अपने अंग वस्त्र से पोछ दिया। स्वर्ण थाल का जल भगवान ने अपने मस्तक पर छिड़का। ईश्वर के कर कमल हमारे चरणों पर, यह त्रुटि ही तो है। भगवान ने हम सबको शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दिया।
6: हे ब्राह्मण, यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपकी तरह उनका दर्शन तो नहीं किया, परंतु उन चरणों का दर्शन मुझे प्राप्त हो गया। स्वयं भगवान ने जिन्हें पूजा है। हे ब्राह्मण, मेरे साथ आइए, मैं आपको आपके निवास स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था करता हूं।
1: जब महाराज परीक्षित से कलयुग ने पूछा मैं कहां वास करूं, तब महाराज परीक्षित ने उन्हें स्वर्ण में निवास करने की आज्ञा दी। अब क्योंकि महाराज ने स्वयं ही स्वर्ण मुकुट पहना था, इसलिए कलयुग जाके उनके मुकुट में बस गया। एक दिन महाराज वन में शिकार करने जाते हैं, साथ ही पीछे छूट जाते हैं। महाराज प्यास से व्याकुल थे।
8: कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित ध्यान में मग्न महामुनि शमिक के कंठ में मृत सर्प डाल देते हैं, एवं शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी राजा परीक्षित को शाप देते हैं कि सातवें दिन उनकी मृत्यु तक्षक द्वारा डसने से हो जाएगी।
1: धर्मनिष्ठ राजा परीक्षित को शीघ्र ही अपने कृत्य पर घोर पश्चाताप होता है।
10: मुनिवर शमिक के प्रति मैंने जो निंदनीय आचरण किया है उसका प्रायश्चित करना होगा। ऋषि पुत्र ने मुझे जो श्राप दिया है वह उचित ही है। सांसारिक भावनाओं में व्यस्त अपने मन को ईश्वर चिंतन में लगाकर आमरण अनशन करता हुआ मैं अपने निंदनीय कर्म का प्रायश्चित करूंगा। गंगा जी के तट पर बैठकर निरंतर ईश्वर का ध्यान एवं चिंतन करता हुआ अपने प्राणों का त्याग करूंगा। मुझे अविलंब गंगा घाट की ओर चलना चाहिए। ये गंगा जी का तट मेरे पूर्वजों का प्रिय है। मेरे पूर्वज भीष्म पितामह की माता गंगा जी की जय हो। हे माते, मुझ पर कृपा करो, मेरा प्रायश्चित सफल करो माता।
8: भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से परीक्षित को आशीर्वाद देने के लिए अपने अपने स्थान से अत्रि, अंगीरा, अगस्त्य, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, व्यास जी, नारद जी आदि मुनि गंगा तट पर पहुंच जाते हैं।
1: परीक्षित सबको प्रणाम करते हैं। इसी समय 16 वर्षीय दिव्य स्वरूप वाले शुकदेव जी का आगमन होता है। शुकदेव जी 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं। भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनकर परीक्षित भक्ति भाव में मग्न हो जाते हैं।
8: भगवान कृष्ण के मित्र उद्धव और गोपियों का प्रसंग परीक्षित जी को अत्यंत प्रिय लगा।
11: मैं अपने सखा उद्धव की प्रतीक्षा कर रहा हूं। एक महत्वपूर्ण कार्य है जो उद्धव को संपन्न करना है। मेरे सखा और मंत्री उद्धव महाज्ञानी है। आओ उद्धव, तुम्हें आज ही ब्रज की यात्रा करनी होगी। वहां जाकर गोपियों को मेरा संदेश देना होगा। यह कार्य तुम्हारे जैसा कोई ज्ञानी ही कर सकता है। गोपियां निरंतर मेरे वियोग में दुखी रहती हैं। उनके नेत्रों से आंसू बहते ही रहते हैं। वे निरंतर मेरे ब्रज आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। उनसे कहना, मेरा वास्तविक स्वरूप निर्गुण निराकार है, जिसके तुम ज्ञानी हो। मेरे उसी स्वरूप का ध्यान करे तो उन्हें वियोग का दुख नहीं होगा।
12: भगवान, आपके कमल नयनों से प्रवाहित अश्रु देखकर मैं गोपियों के प्रेम का अनुमान कर सकता हूँ। मैं इसी समय आपका संदेश लेकर ब्रज जा रहा हूँ।
11: हाँ उद्धव, शीघ्र जाओ।
13: सखियों, सुना है कोई हमारे कृष्ण का संदेश लेकर नंद बाबा के घर आया है।
14: सुना तो मैंने भी है।
15: चलो ना, नंद बाबा के घर चलते हैं।
16: सखियों, मैंने सुना है कि वह दूत कृष्ण जैसा रूप बनाकर आया है।
13: हमारे कृष्ण गोकुल आने वाले हैं। हो सकता है ऐसा संदेश लेकर वह दूत आया है। चलो नंद बाबा के घर चलते हैं।
17: उद्धव जी, आपसे देवकी, वसुदेव और कान्हा का कुशल मंगल सुनकर मन प्रसन्न हो गया। अन्यथा हमारे ब्रज के जीवन में सर्वत्र बिना कन्हैया के सब सूना सूना ही लगता है। ये देखिए, गोपियां आ गई। ये अवश्य आपसे मिलने आई हैं।
18: नंद बाबा की जय हो।
17: ये उद्धव जी हैं, कन्हैया के दूत बनकर आए हैं। इन्हें अपने साथ ले जाओ, यहीं कहीं बैठकर वार्तालाप करो। तुम सबके लिए कन्हैया ने संदेश भेजा है।
13: आइए उद्धव जी,
14: आसन ग्रहण कीजिए। उद्धव जी,
15: हे उद्धव, हमारा मन अधीर हो रहा है। हमें बताइए, कान्हा ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है?
16: हे उद्धव, कृष्ण आपके साथ क्यों नहीं आए?
13: हे उद्धव, हमारे प्राणों के आधार, हमारे प्राणनाथ क्या हमारा स्मरण करते हैं?
12: हे गोपिका, जैसे तुम्हारे नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, ऐसे ही भगवान के नेत्रों से तुम सबके स्मरण में अश्रुपात होते हुए मैंने देखा है।
14: हे उद्धव, हमें प्रीतम कृष्ण का संदेश सुनाइए।
18: हाँ हाँ, सुनाइए।
12: हे गोपियों, भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं ही सर्व भूतों में व्याप्त आत्मा हूँ। इस आत्मा की 4 स्थितियां हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय। मैं अजन्मा हूँ। निर्गुण निराकार मेरा विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो तुम्हारे हृदय में स्थित है। इसीलिए मेरा तुम्हारा कभी वियोग नहीं हो सकता। मैं तुमसे दूर आ गया हूँ, जिससे तुम मेरे निर्गुण निराकार का ध्यान अपने मन में कर सको।
19: अरे भ्रमर, क्या तुझे हमारे कृष्ण ने भेजा है जो तू गुन गुन करता हुआ हमारे चरणों के पास घूम रहा है?
14: तू तो स्वभाव से ही छलिया है, जैसे कृष्ण हमें छोड़कर चले गए और फिर कभी हमारी सुधि नहीं ली, तेरा स्वभाव भी तो वैसा ही है।
15: हे भवरे, हमने श्री कृष्ण के लिए अपने सभी संबंधों का त्याग कर दिया। हमारे कृष्ण ही हमारे सर्वस्व हैं। इसी भावना से हमने उनको माना।
16: अरे मधुकर, कृष्ण तो ऐसे निर्मोही निकले कि हमारा उनके जाने के पश्चात क्या हाल होगा, तनिक विचार नहीं किया?
19: अरे श्री कृष्ण के दूत भवरे, हमें मनाने के लिए तुम्हें दूत बनाकर भेजा गया है, परंतु हम तुम्हारा विश्वास कैसे करें?
20: तुम मथुरा से आए हो? वह मथुरा तो काजल की कोठरी है, वहां से जो आया है वह काला ही होता है। तुम काले हो, एक वो अक्रूर जी आए थे जो हमारे प्रियतम कृष्ण को ले गए, वे भी काले थे, और हमारे कृष्ण की तो बात ही मत पूछो, उनके रंग से ही यमुना जी काली हो गई हैं।
14: गुनगुन निर्गुन निर्गुन करने वाले मधु, हम कुछ उपहास नहीं कर रही हैं, हमें सत्य समझना है। यह निर्गुण किस देश का वासी है, इसका रंग रूप कैसा है, कौन से रस की वह इच्छा करता है, उसकी स्त्री कौन है, उसकी दासी कौन है?

0: सखी, मधुकर तो गया।
1: अवश्य ही वह मथुरा लौट गया सखी। उद्धव जी हमारे अतिथि हैं, हमारे सम्मानित हैं। हम अपने मन का भाव इनसे कैसे कहें।
2: धन्य है आपका जीवन, धन्य है आपका भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम।
0: हे उद्धव जी, हम तो उन्हीं कृष्ण के स्मरण में किसी प्रकार जी रहे हैं, जो यहाँ गाय चराते थे। गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक जिन्होंने कनिष्ठिका पर उठा रखा था, जो हमारे घर से माखन चोरी करते थे, उनका वही सगुण साकार रूप हमारा आधार है। हमारे लिए और कोई ईश्वर नहीं है। हे उद्धव जी, हमारे नेत्र उनके दर्शन के प्यासे हैं। हमारे प्रिय श्री कृष्ण से कहिएगा, हमारे प्राण इसी आशा में शेष हैं कि वे हमें दर्शन देने अवश्य आएंगे। हे उद्धव, कृष्ण से कहना।
2: यह प्रेम अद्भुत है, यह भक्ति अद्भुत है, इसके समक्ष मेरा ज्ञान नतमस्तक है।
3: परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि गुरुवर, भगवान कृष्ण के अनेक नाम हैं, उन्हीं में से एक नाम दीन बंधु है। क्या इस नाम के पीछे कोई कथा है? यदि है तो मुझे सुनाइए।
4: सुखदेव जी, राजा परीक्षित को गुरुकुल में भगवान कृष्ण के सखा सुदामा की कथा सुनाते हैं।
5: तीन दिन से
3: कि गुरुवर, भगवान कृष्ण के अनेक नाम हैं, उन्हीं में से एक नाम दीन बंधु है। क्या इस नाम के पीछे कोई कथा है? यदि है तो मुझे सुनाइए।
4: सुखदेव जी।

0: मेरे बच्चे भी भूखे हैं, मेरे पति भी भूखे हैं, भोजन के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं। हे कृष्ण, हे समस्त सृष्टि के पालनहार, हमने ऐसा क्या अपराध किया है जिसका दंड हमें दरिद्रता के रूप में मिल रहा है। मैं भूखी रह सकती हूँ भगवान, हे मेरे दीन दयाल, हे करुणा निधान, हे दया निधान, हे द्रौपदी परित्राता, हे यशोदा नंदन, मुझसे अपने संतानों और पति की भूख नहीं देखी जाती।
1: हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।
0: हे स्वामी, निरंतर आप जिनका नाम स्मरण करते हैं, वे भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा हैं। यदि आप उनके पास जाएं, तो वे आपको इतना धन प्रदान कर देंगे जिससे हमें अन्न वस्त्र का अभाव ही ना हो। मेरा निवेदन मानकर द्वारिका जाइए, भगवान तो आपके मित्र हैं। आप सदैव मुझे उस समय की बातें सुनाते रहते हैं जब संदीपनी जी के गुरुकुल में भगवान कृष्ण के साथ आप अध्ययन करते थे।
1: तुम कहती हो तो मैं अवश्य जाऊंगा, मेरे मन में भी उनके दर्शन की लालसा है। उनके लिए कुछ उपहार भी तो चाहिए, भगवान के पास खाली हाथ जाना उचित नहीं होगा।
0: मैं उपहार की व्यवस्था करती हूँ। ये 4 मुट्ठी चावल हैं, यही भगवान को भेंट कर दीजिएगा। भगवान से मेरा एक संदेश कहिएगा कि माह में 2 एकादशी होती हैं, परंतु मेरे जीवन में हर दिन एकादशी है।
1: अच्छा, मुझे विदा दो, मैं द्वारका जा रहा हूं। बहुत थक गया हूं, वस्त्रों पर धूल लग गई है। ऐसी दशा में कैसे भगवान से भेंट करूंगा? द्वारकापुरी तो पहुंच गया, भगवान ने ही सहायता की। वे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ पता ही नहीं चला कैसे द्वारका पहुंच गया। भैया, भगवान कृष्ण का महल कहाँ है?
2: वह सामने जो दिख रहा है वही भगवान द्वारकाधीश का महल है।
1: धन्यवाद भैया। भैया, मुझे भगवान कृष्ण से मिलना है।
3: अच्छा, भगवान से मिलना है, अवश्य मिलिए, अपना परिचय तो बताइए।
1: वृंदापुरी से आया हूँ, मेरा नाम सुदामा है। भगवान कृष्ण मेरे बचपन के मित्र हैं, मैं ब्राह्मण हूँ।
3: मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सेवक, भगवान को तुरंत जाकर सूचना दो।
2: प्रणाम भगवान, एक सूचना है।
4: हाँ, कहो।

0: सुदामा, इस जल में अपने चरण रखो, मैं तुम्हारे चरणों का प्रक्षालन करूंगा।
1: नहीं नहीं भगवान, ऐसा ना करें। भगवान, मेरे चरणों पर आपके दिव्य हस्त, आप भगवान हैं, मेरे मित्र हैं तो क्या हुआ, मैं आपका भक्त हूँ।
0: सुदामा, मैं अपने भक्तों के लिए ही तो आया हूँ, तुम मुझे सेवा से वंचित कैसे कर सकते हो। रखो रखो अपने चरण। ओह, कितने शूल तुम्हारे चरणों में चुभ गए हैं, तुम्हारे चरण घायल भी हो गए हैं, कितना कष्ट सहा मेरे सखा।

सुदामा, सुदामा मेरा सखा सुदामा, सुदामा तुम कितने निष्ठुर हो, अब जाकर तुम्हें मेरा स्मरण आया, आओ सुदामा आओ। हे देवी, थाल में जल लेकर आइए।

0: आओ मित्र, इस आसन पर बैठो। अच्छा, तुम्हें गुरुकुल की उस घटना का स्मरण है जब हम दोनों वन में लकड़ी लेने गए थे? संध्या काल में इतनी वर्षा हुई कि वन में सर्वत्र जल ही जल हो गया। पूरी रात्रि वन में व्यतीत हुई एक वृक्ष पर। प्रातःकाल गुरुवर हमें ढूंढते हुए आए और अपने साथ ले गए।
1: आहा कन्हैया, मुझे स्मरण है,
0: मेरी भाभी जी ने मेरे लिए कुछ उपहार भेजा है ना, लाओ मुझे दो।
2: बस बस भगवान, इतना पर्याप्त है, जो बचा हुआ है उस पर मेरा अधिकार है।
0: चलो सुदामा, स्नान कर लो, फिर साथ में भोजन करेंगे। वस्त्रों की चिंता मत करो, तुम्हारे लिए वस्त्रों की व्यवस्था है।
3: सुदामा अपनी वृंदापुरी पहुंचे तो चकित हो गए। हर घर महल की तरह सुंदर, सर्वत्र वैभव ही वैभव। सुदामा का घर सुंदर महल बन चुका था। दिव्य वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए सुशीला को देखकर सुदामा सब कुछ समझ गए। समस्त सृष्टि के ऐश्वर्य के स्वामी भगवान कृष्ण ने उन्हें रंक से राजा बना दिया था।

0: आज श्रीमद् भागवत कथा का सातवां दिन है। सुखदेव जी परीक्षित को अंतिम उपदेश दे रहे हैं।
1: हे राजन, इस धारणा से मुक्त हो जाओ कि आज तुम्हारी मृत्यु होगी। हे राजन, आत्म तत्व का चिंतन करो। प्रिय परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान कृष्ण साक्षात विद्यमान हैं। तुम शाश्वत आत्मा हो, तुम देह से सर्वथा भिन्न हो, तुम ब्रह्म हो। श्रृंगी के श्राप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म नहीं कर सकता।